सुखी ब्रह्म न कोई एक घर माठी दलित्रियति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह।

आए फेरी वरुण जी दृढ़ रूप धारी, पूजा करे निरपति जे गरी भक्ति बारी। विनती करे वरुण को सवदात आओस, यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दातै न उम्रिदिनु छैन बलि भनेर, देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्की आए, राजा खुसी भइन्वार नगर नलाए।

कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून के साथ श्रृंखली शुरुआ सुदामा की नारी करच दिन भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई विनती कर चिंता पिदर ले गुरु देवता राजा रूपन भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहीं ज्योति समना देवी के सौगर मन देव चंगा दरिकन मिलन चौधरी का हर्षित मिलाता नगर में विचार वर्तन में विचार मुठबे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ लगी गए प्रयोजित पूछे द्वारिका माँ
1: नारायण
0: जन्यो बालक ओ जन्यो बालक ओ जगा

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंड थप्लो 7 MHz मद्र प्रसाद सापकोट आज हो विक्रम संवत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 30 तारीख श्रावण 14 गते बिहीबार परेवा तिथि अब स्तुति करौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पयारी।

धर्म कुमार कैसर्य श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल सुत सहित का।

0: वासुदेवाय नमः हरि परमात्मा।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंख कपाल भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म चानन निलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिरक्षे बलिदक्षे।

दुर्वासा अघि थे कुमार पछि थे जय राम जय बोल्दथे बाटो घाटो बजार डाकी दरबार को मार्गली चल्दथे यस्ता पुण्य महर्षि को नचुके लौ लौ गरौं दर्शना